0: बना नाइट्स एंड वेक काउंटी के नेताओं ने अपना वार्षिक दैट इज भाषण एबीसी 11 दिया। इस बार की थीम वी आर वेक रखी गई एंड प्रशासन ने काउंटी में हुए आर्थिक विकास, खेती की जमीनों को बचाने के प्रयासों और हेल्थ के लिए जो है बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा काम किया है एंड उनकी सराहना की। हालांकि उन्होंने क्लियरली ये भी माना कि क्षेत्र में लगातार बढ़ती आबादी के कारण जो है वो बुनियादी ढांचे और बजट पर वित्तीय दबाव जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो ये चीज़ें बताई गई है एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो डेवलपमेंट तो हो ही रही है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।
1: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू तो?

0: बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा नाइट्स एंड जिन छात्रों ने पढ़ाई के लिए लोन लिया है सरकार ने उन्हें जो है बड़ी राहत दी है। कम ब्याज दर वाली सरकारी योजना में जुड़ने की आखिरी तारीख आज खत्म हो रही थी लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर दिसंबर के एंड तक कर दिया है। इससे छात्रों को लोन चुकाने में आसानी होगी। ये काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि यार बहुत बार ऐसा होता है कि छात्र जो होते हैं वो पढ़ने की रुचि रखते हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्हें लोन लेना पड़ता है और इसकी अगर टाइमलाइन जो है वो बढ़ गई है तो नथिंग इज़ लाइक दैट होता है यार, मतलब होता है और सरकार बहुत अच्छा कर रही है। तो आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंजॉय करते हैं ये अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

कुछ हफ्ते पहले मैं बता रहा था कि कार चोरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि धरम पुलिस ने गाड़ियों की चोरी करने वाले एक गैंग को पकड़ा है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी की गाड़ियां और अवैध बंदूकें भी बरामद की है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ गाड़ियों के शीशे तोड़े जाने की शिकायतें आ रही थी। होटल के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनके शीशे तोड़े जा रहे थे, अंदर का सामान चोरी हो रहा था। तो पुलिसों का जो है ये बहुत बड़ा सक्सेस माना जाएगा एंड 8 लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी इंक्वायरी भी चल रही है, आगे क्या क्या होने वाला है डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाण नाइट सैन। जो वेक काउंटी के बड़े अधिकारियों ने आज एक मीटिंग की एंड वो कह रहे थे कि हमारे इलाके में बिजनेस और खेती अच्छी हो रही है, लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी की वजह से सड़कों का बजट, उसका दबाव जो है वो बढ़ गया है, इसलिए इट्स लाइक थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आबादी बढ़ जाती है, लैंड कम रहती है। हमने बचपन में पढ़ा था कि एक दिन ऐसा आएगा पूरे वर्ल्ड में कि आबादी बढ़ेगी, लैंड कम रहेगी। तो ये चीज़ें जो है, मतलब बहुत सारे जो फैक्ट्रीज़ है वो खुली जाएंगी एंड उसके बाद प्रदूषण भी होगा, ये सारी चीज़ें हमने बचपन में पढ़ी थी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें हो रही है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाण नाइट्स, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

अब सुन रहे रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स, और सबसे पहली और बड़ी खबर बॉलीवुड से आ रही है और अब मैं आपको कुछ बॉलीवुड की खबरें बताना चाहूँगा। तो पहली खबर करण जौहर के फैंस के लिए है। पिछले 22 सालों से सबका पसंदीदा रहा टॉक शो कॉफ़ी विद करण अब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। करण जौहर ने खुद सोशल मीडिया पर एक इमोशनल मैसेज शेयर करके बताया है कि ये शो का आखिरी और फाइनल सीजन होगा जो 14 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। तो बॉस सितारों के सीक्रेट्स जानने का ये आखिरी मौका जो है वो बिल्कुल छोड़िएगा मत। कॉफ़ी विद करण के कितने सारे रील्स भी आते रहते हैं सोशल मीडिया पर। कॉफ़ी विद करण का जो एक ऑरा था, एक जो वाइब थी, वो काफ़ी, मतलब टॉक शो के बारे में अगर बात करें तो नंबर 1 पे कहलाएगा कॉफी विद करण। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायर अपन निर्वाणा नाइट्स एंड मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ बॉलीवुड की खबरें आप लोगों के साथ। तो अगली खबर ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन पेरिस फैशन वीक में अपने शाही लुक और नए हेयर कलर से सबका दिल जीतने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन आज ही मुंबई वापस लौट आई है। एंड एयरपोर्ट पर जब उन्होंने स्माइल करते हुए हाथ मिलाया मीडिया से तो उनके इस सादगी भरे अंदाज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो प्यार ऑडियंस ने
1: You're listening to WCMC FM Holly Springs 99.9 FM HD4 W270 DT Durham 101.9 FM WDUR Durham 1490 AM

वेल एंजॉय किया आपने गाना, ये गाना था काफ़ी बेहतरीन जिसने सेट कर रखी है इस इवनिंग की वाइब। तो मैं यही कह रहा था कि राजकुमार राव एक बार बड़े पर्दे पर तहलका मचाने आ रहे हैं अपनी नई फिल्म प्रहार के साथ, जिसका धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म 26/11 मुंबई आतंकी हमले के सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की असली कहानी पर आधारित है और अक्टूबर में थिएटर्स में रिलीज होगी। ये जो बायोपिक रहती है ना, लाइक ये देखने का मज़ा अलग ही होता है। वी गेट टू नो कि क्या उनके साथ हुआ था, कैसा उनका करियर रहा, कैसे वो पर्सन कुछ बने लाइफ में, उनके पीछे जो कहानी थी वो क्या थी, ये हमें सब समझ में आता है। तो राजकुमार राव जो रियल कैरेक्टर निभाते हैं, मतलब वो तो अप टू द मार्क ही रहता है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स, रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

आपने एंजॉय किया ये गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। एंड अगली खबर है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के फैंस के लिए। मनीष मल्होत्रा के एक शानदार फैशन शो में आलिया और विक्की कौशल ने एक साथ रैंप वॉक किया, जहां आलिया का बैलेंस थोड़ा बिगड़ते बिगड़ते बचा। वही शो के बाद जब भीड़ बढ़ी तो रणबीर कपूर थोड़ा मीडिया पर भड़क गए और आलिया को पूरी सुरक्षा के साथ कार में लेकर गए। इसे कहते हैं केयरिंग हस्बैंड। मतलब देखा जाए तो रणबीर कपूर जिस तरह से राह से प्यार करते हैं, आलिया को संभालते हैं और उनका वर्क लाइफ भी बैलेंस करते हैं, लाइक फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करना अगर सीखना है तो रणबीर कपूर से सीखना चाहिए, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

निर्वाधन लाइट्स। और जैसे मैंने आपको कहा कि करण जौहर का जो कॉफ़ी विद करण का टॉक शो है वो 22 साल के बाद ख़त्म होने वाला है। एंड एक बड़ी खबर शो के अंदर से आ रही है कि आखिरी सीजन के एक धमाकेदार एपिसोड के लिए शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान के साथ शूटिंग पूरी कर ली है। यही नहीं, पूरे 10 साल के बाद सलमान खान भी इस शो पर वापसी करने वाले हैं। यानी इस बार एंटरटेनमेंट का ट्रिपल डोज मिलने वाला है ऐसा मुझे लगता है। सो सलमान खान के रील जो आते थे कॉफ़ी विद करण के एंड शाहरुख खान के, मतलब इतना प्रॉपर शो किया था ना, क्या बताऊँ, जो लेवल था शो का ये बहुत ही अलग था। आज तक ऐसा शो देखने मिला नहीं है टॉक शो के बारे में अगर बात करें तो। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते।

एंजॉय किया ये गाना गाना था, वाकई में काफी बेहतरीन यार। कॉफी विद करण जो शो है इसका मैं पर्सनल बहुत फैन रह चुका हूँ। जो भी सीजन्स थे, एपिसोड थे, मैंने मोस्टली सारे कुछ देखे ही है। एंड यू नो जिस तरह का प्यार इस शो को मिला है, अब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि शो का ये आखिरी सीजन रहेगा। मतलब ये आखिरी होने वाला है, क्या पता कमबैक आगे होगा या नहीं होगा। लेकिन जिस तरह की गॉसिप एंड जो भी थीम थी, सेलिब्रिटीज जो जिनका फैशन लेके आते थे और ये शो चलता था, बहुत ही मज़ा आती थी। लाइक एंकरिंग करण जौहर जैसे तो किसी ने किया नहीं आज तक टॉक शो में। इट्स लाइक वेरी नाइस। एंड यार बाकी तो क्या कहूँ, मतलब शाहरुख खान और आर्यन खान का तो एपिसोड देखना बहुत अच्छा रहेगा, और भाईजान का भी। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स।

रेडियो अपन निर्वाणा नाइट्स एंड यस यार मजा आएगा कॉफी विद करण का आखिरी सीजन देखने में। आप हमारे रेडियो नायरा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से एंड एप्पल प्ले स्टोर से। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है एंड टाइप करना है सिंपली रेडियो नायरा, यू विल गेट एन ऐप। ऐप मिलने के बाद आप हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं अनलिमिटेड, बस आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, है ना। तो मैं यही कह रहा था यार, 7 से 10 का टाइम आप लोगों के साथ बातें करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। एंड कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा पर सेम टाइमिंग्स पर निर्वाणा नाइट सीए शो पर। तो अभी वक्त हो चुका है अपने लव वंस के साथ एंजॉय करने का, डिनर एंजॉय करने का। मिलता हूँ कल, एंजॉय कीजिएगा। गुड नाइट, शब खैर।

WMCFM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

हर बाल की खाल की ये छाल भी खा जाए, इसके हाथ पड़ जाए तो महीने साल भी खा जाए, किसी बेहाल का बचा जो हाल भी हाल खा जाए, बेमौत मरते मन का ये मलाल खा जाए, लालू का लाल खा जाए, नक्सलबारी की नाल खा जाए, बचपन का धमाल खा जाए, बुढ़ापे की शाल खा जाए, हाया तो छोड़ो बहया की चाल भी खा जाए, और अगर परोसा जा सके तो ख्याल भी खा जाए।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: भैया मुझे जाना ही होगा।
1: लेकिन क्यों?
2: मेरे ग्लासेस
1: यही तो हैं।
2: थैंक्स। मुझे जाने दो ना प्लीज।
1: जाना ही है तो परमिशन क्यों लेते हो?
2: दिया दिया दिया रुको तो। दिया दरवाजा खोलो।
1: नहीं।
2: ओके तो मैं जा रहा हूं।
1: हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम वहीं खड़े हो।
2: देखो इस बार मैं सच में जा रहा हूँ। But remember, I love you.
1: अरे ये तो सचमुच चला गया। आशीष आशीष आशीष।

0: क्या हुआ?
1: आशीष चला गया और मैं उसे ठीक से बाय भी नहीं बोल पाई।
0: क्यों?
1: क्योंकि जाने से पहले मैंने उसे झगड़ा कर दिया।
0: तो रोने से क्या होगा, जहाँ वो गया है वहाँ जाओ और मना लो।
1: सच?

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3. 2, 1, let's start the fun.

0: شام ان کے نام جو کرتے ہیں
1: کیا
0: لو لو لو.

सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

ಸುಂದರಹಿ ರೇಡಿಯೋ ನಾಡಾ 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM ಪಕ್ಕಾ ದೇಸಿ ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 4090 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: wellness through the richness of Indian traditions. Stay tuned to Healthy Rehne Ke Liye Musical Parampara on Radio Naira.
1: We are delighted to bring our play.
2: Jaane Pehchaane.
1: Can you meet together, all of you?
3: Jaane Pehchaane Anjaane.
1: Dedicated superstars of this play are saying Jaane Pehchaane Anjaane, and our tour starts from 5th in Houston. Our friend Rajender of Star Promotion is bringing this play to various cities. A lot of cities are booked, and there are certain cities which are going to be still. And if you have any issue, if you problem, please look at the number and call up and bring this play to your city. The play deals with togetherness and different generations. It's music by
4: Anumale.
5: And lots of laughter.
1: Lots of
5: emotions. You
4: lots of
5: cry.
1: She also speaks in between. She is everybody. My name is Anupam Kher.
5: I'm Meghna Malik.
6: I'm Swarup Sampat.
7: Maya Sharma.
8: Shraddha Mandale.
9: Amin D'Souza.
10: Gajendra Hire.
1: Writer director Gajendra Hire.
5: Yes.
11: Writer director Gajendra Hire. I am Vikas Rawat.
5: Yes.
1: And we are coming to America and to Canada. Rajender Ji, Jamado.
5: Yes. Besabri se intezar hai aap logon se milne ka.
4: Jaane
5: pehchaane USA.
1: अपने अलग अलग भाषाओं के लोग आ रहे हैं. बच्चों को शुर करकशिर पटका
6: जरूर आओ. जो टिकट लाइने मजा उसे
5: राम राम जी. जल्दी से जल्दी मिलन आ रहे हैं. खा रहे थे
7: अमित सर एक साथ आ रही थी अमेरिका. आपने सबसे मिलेला
1: अलग अलग भात भात के और कोई
10: नक्की या सुंदर अनुभव. सुंदर एक अनुभव घेऊन
6: लवकर लवकर टिकट बुक करा
11: प्लीज. बन्नी जास्ती जना बन्नी एल्लारू बन रही.
1: अरे बा इंडिया विल बी सून इन US एंड कैनेडा विद द प्ले
3: जाने पहचाने अनजाने.
12: मूवी देखी थी, पाव भाजी खाई थी, पंजी गए थे.
0: रॉन्ग. 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है. अरे भूल ही गया, आ डेट तो याद रखवानी छोए. गरबा लवर्स, आर यू रेडी? ऑन अक्टूबर बीजी रिधम अने रास लेने आवे छे गरबा नाइट. चनिया चोड़ी अने केडियो रेडी राखो. एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल. जॉइन अस फ्राइडे ऑक्टोबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स. डांस टू द इनक्रेडिबल बीट्स ऑफ अमृता मंके एंड निमेश नगर विद लाइव म्यूजिक, डिलिशियस फूड, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रात भर गरबानी मौज. Early bird tickets only until September 7th.
12: Tickets on Sulekha or check the Rhythm and Ras flyer on Radio Naira's Facebook, Instagram or RadioNaira.com. One beat, one circle, one community.
13: Naira 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Loka.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा.
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स.
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोक।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

विशाल ददलानी एंड श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना ड्रामा क्वीन, कंपोज्ड बाय विशाल शेखर एंड लिरिक्स बाय अमिताभ भट्टाचार्य एंड कुमार, ओनली ऑन रेडियो सिटी।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham,

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सदियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. पक्का देसी पक्का लोकल.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: Mira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Dial up ko jao Pakka Desi.
2: हेलो दोस्तों, नमस्ते राली दुरम केरी मॉरिसविल और हमारे सारे ऑनलाइन लिसनर्स. मैं हूँ आपकी होस्ट वैष्णवी और आप सुन रहे हैं हेलो वैष्णवी, विच इज़ अ लाइव शो ओनली ऑन रेडियो नायरा पर एट 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम एंड 1490 एएम पर. वेल, आज के अगले दो घंटे हम क्या बात करें, मूवीज, म्यूजिक और आपकी आपका

बताएंगे कि आज आपका दिन कैसा था, या फिर ऐसी कोई क्वेश्चन पूछती हूँ मूवीज के बारे में जो आपको याद दिला दे कोई ना कोई यू नो कनेक्शन विथ, हर किसी का कनेक्शन होता है ना मूवीज से, तो देखते हैं कौन सी मूवी किससे कनेक्ट करती है आज। तो यस, मैं यहीं पे हूँ आप स्टूडियो में, थर्सडे आ चुका है एंड इट्स 5:02 PM। आई एम श्योर सबका दिन बहुत अच्छा होगा और सब लोग वीकेंड का वेट करेंगे। तो देरी किस बात की है, अब शुरू करते हैं इस गाने के साथ और आप हमारे साथ जुड़े रहिए एट रेडियो नायरा। वेल, नया गाना आने वाला है आपके लिए, प्यारी लागे, दैट इज तुलसी कुमार, विशाल मिश्रा और मनोज। यस, हियर यू गो गाइस, एंजॉय द सॉन्ग, विल बी बैक राइट आफ्टर टू सॉन्ग्स।

वेलकम बैक। वेल, मूवी देखते वक्त हम कभी हीरो से ज्यादा टेंस हो जाते हैं। ट्रेन छूट रही हो तो हम सोफा पर बैठे बैठे बोलते हैं भागो भागो, जैसे हमारी आवाज स्क्रीन के अंदर पहुंच जाएगी, है ना? ऐसा लगता है। आज देखते हैं कि आपको वो सीन्स कितने अच्छे से याद हैं। रूल सिंपल है, मैं पहले सीन डिस्क्राइब करूंगी और आंसर के लिए आपको लगभग यू टेक योर टाइम, नो रिस्ट्रिक्शंस। जरूरत हुई तो एक हिंट भी दे दूंगी, बट मूवी का नाम चाहिए, एक्टर का नाम बोनस कॉन्वर्जेशन के लिए रखते हैं, ठीक है? और आप किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ अगर सुन रहे हैं तो दोनों अपना आंसर अलग अलग सोचिए, पहले दूसरे का आंसर मत कॉपी करना, वो हम पहले करते हैं। हर सवाल के बाद मैं आई जस्ट वेट और मैं आपके लिए गाना बजाऊंगी, एंड उसके बाद जिसका भी कॉल आएगा लेट्स सी कि किसने गेस किया है, और हम देखते हैं वो फिल्मी मेमोरी जो फुल चार्ज होके अगर रेडी है या नहीं है, ठीक है? ये चेक करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट वाला सीन बहुत ईजी है। कैन मैं ना डिफिकल्ट, नो वे कि मैं कुछ डिफिकल्ट सोचूं। इट्स वेरी सिंपल, और अगर आपने इसका आंसर गेस कर लिया तो कॉल करना मत भूलना एट 919-999-8595 पर। सो रेडी? चलो। सो एक पिताजी अपने अपनी बेटी का हाथ छोड़ देते हैं, ओके? एक फादर अपनी बेटी का हाथ छोड़ देते हैं, वो प्लेटफॉर्म पर दौड़ती है और मूविंग ट्रेन से हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है। कौन सी फिल्म है? हिंट चाहिए या यू ऑलरेडी गेस्ड इट? अगर आपने गेस किया है तो मुझे कॉल करिए एट 919-999-8595 पर। मैं फिर से बता देती हूँ, एक फादर अपनी बेटी का हाथ छोड़ देते हैं क्योंकि वो और वो प्लेटफॉर्म पर दौड़ती हुई एकदम ट्रेन, मूविंग ट्रेन की तरफ दौड़ती हुई, और मूविंग ट्रेन से हीरो अपना हाथ बाहर निकाल के ऐसा साइड में देख के उसका हाथ पकड़ लेता है। कौन सी फिल्म है ये? चलिए आप गेस करिएगा। और इसी के साथ डे बिफोर यस्टरडे, यस ट्यूसडे को हमने शो किया था, लाइव शो विथ अनुपम खेर सर एंड स्वरूप जी के साथ, तो स्वरूप संपत जी के साथ ऑफकोर्स। इतना मज़ा आया, दे आर सो डाउन टू अर्थ, कितने प्यारे लग रहे थे दोनों, बहुत मज़ा आया। और उनका शो कल है तो मिस मत करना, जाने पहचाने अनजाने एट 8:15 टुमारो एट रैली मेमोरियल। टिकट्स नहीं खरीदी है तो प्लीज़ खरीद लीजिए, क्योंकि ये शो बहुत ही अच्छा होने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने बताया था ना, आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना, बट इट वॉज सो अमेजिंग टू हियर फ्रॉम देम कि उन्होंने अपनी जान लगा दी है इस प्ले के लिए। और प्लेस कहाँ ज़्यादा होते हैं, है ना? और हमें मिस नहीं करना चाहिए डेफिनेटली इफ इट इज़ ऑफ अनुपम खेर जी सर, राइट? तो या तो दैट वॉज अ गुड मेमोरी फॉर मी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था मिलके। मैं थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लास्ट में मेरी तारीफ की, वाह, मुझे तारीफों के मतलब किसको अच्छा नहीं लगता तारीफें सुनने का, राइट? तो चलिए आप गेस करिए आंसर, और मैं आपको तब तक सुनाती हूँ ये कूल सा गाना, ओके?

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4, 101.9 एफएम एंड 4090 एएम पर। वेल, किसी ने गेस कर लिया है और देखते हैं वो कौन है। हेलो
1: हेलो,
0: हाय, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हाय, मेरा नाम स्नेहा है।
0: हाय स्नेहा, हाउ आर यू?
1: आई एम डूइंग सो ग्रेट, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड, थैंक यू फॉर कॉलिंग रेडियो नायरा एंड आई एम श्योर यू आर लिसनिंग टू द शो।
1: यस, दैट्स राइट।
0: वेल, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: आई लव इट। आई एम टॉकिंग फ्रॉम मॉरिसविल, नॉर्थ कैरोलिना।
0: ओके, वंडरफुल। सो मॉरिसविल की निवासी हैं आप? वेल, नाइस टॉकिंग, वाओ, अमेजिंग। तो बताइए, आपने गेस किया कौन सी मूवी का सीन था वो?
1: आंसर है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, काजोल एंड शाहरुख खान। तो
0: वंडरफुल,
1: लेट्स हर हैंड एंड शी रन्स।
0: अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। किसको नहीं पता ये, राइट?
1: That's why I took a chance.
0: Wonderful. That's so nice of you. You know, तो मैं easy सवाल ही पूछ रही हूँ. So and I'm glad you called and you guessed it right. And I think you know, मैं hint भी दे, hint क्या ही दूँ? मैं सोच रही थी hint दूँगी. You know, hero heroine के नाम है राज और सिमरन. Then मैंने सोच yeah. Absolutely. How is your day so far?
1: My day has been wonderful. I'm looking forward for the evening because I have cricket practice in the evening with my women's team.
0: Wow, you're a cricketer?
1: Yes, I mean we play for Triangle Cricket League in this area.
0: Oh, lovely! Wow, that's amazing. So sportswoman, come on, great. How is your practice going on?
1: Yeah, I mean, it's going very good. We have new players who have joined and we're training them. Mm-hmm. And we're just building teams and we are leveraging what we have. It's fun, you know, just to stay like fit and also competitive by playing cricket.
0: Yeah, it's always fun first and then of course the competition jayega nahi kyunki wo cricket hai. Definitely team versus team. Yeah, I'm sure, you know, you must be having a lot of fun and great to know that you play cricket and wish you good luck and to your team as well.
1: Yeah, thank you so much. And you're doing a great job. You entertain us. You actually talk so nice things and, you know,
0: थैंक यू सो मच स्नेहा, नाइस टॉकिंग टू यू एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो नायरा एंड थैंक्स फॉर गेसिंग द सीन एंड द मूवी नेम। वेल, यू हैव अ वेरी गुड इवनिंग, बाय बाय। तो ये थी स्नेहा, उन्होंने एग्जैक्टली क्या करेक्ट गेस किया ना। वेल, आप भी कर सकते थे, कौन नहीं जानता राज और सिमरन को। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं और वो है, ओके, दिस इज़ अगेन अनदर सुपर डुपर हिट मूवी है ये। तो उसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, ठीक है। एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में, ओके, तीन दोस्त एग्ज़ाम के प्रेशर से डील करते हैं। उनका एक दोस्त सबको अपने दिल को यू नो शांत करने के लिए तीन वर्ड यानी थ्री वर्ड मंत्रा देता है, ओके। अब वो मंत्रा मैं बताऊंगी नहीं कौन सी फिल्म, क्योंकि उसी में है आंसर। ये मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। सीन है जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में तीन दोस्त बहुत ही यू नो एग्ज़ाम के प्रेशर को डील कर रहे होते हैं एंड उनके उन दोस्तों में से एक दोस्त, इन तीनों में से एक दोस्त जो होता है वो सबको अपने दिल को शांत करने के लिए थ्री वर्ड मंत्रा देता है। और वो क्या है, कौन सी फिल्म है? तो आप गेस्ट करते रहिए और अगर आपको आंसर पता हो तो आप कॉल कर सकते हैं एट 919-999-8595 पर और हमें आंसर बताइए। और तब तक के लिए चलिए सुनते हैं ये गाना और वो है रूप दी रानी। अमेजिंग सॉन्ग मैन, यू विल लव इट।

Well, welcome back to and you're listening to Radio Naira. And हाँ, इसे अभी जो मैंने question पूछा था engineering college के hostel में तीन दोस्त, तो उसका answer एक ने किया, but you know कितनी प्यारी आवाज़ में उन्होंने कहा, नहीं नहीं मुझे आने नहीं जाना है, आप बस आंसर सुन लो. दैट्स हाउ क्यूट. एंड वो है संगीता जी, जिन्होंने गेस किया और मूवी का नाम पता है. तो ऑफकोर्स अगर आपको नहीं पता है तो मूवी का नाम है थ्री इडियट्स. यस दैट्स राइट. एंड थैंक यू संगीता फॉर कॉलिंग रेडियो नायरा, और आपने सही गेस किया है, थैंक यू सो मच. वेल उसके बाद अब सब गेस कर रहे हैं, तो मैं ना इसके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ना टफ करने वाली हूँ क्वेश्चन का. करूँ ना करूँ? अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये मूवी के बारे में बताने से पहले मैं ये बताती हूँ कि ये बहुत ही इमोशनल मूवी है, और इस मूवी ने आई थिंक सबको रुला दिया, सबको, यानी कि सबको. आज भी अगर उस मूवी का कोई गाना सुनते हैं हम, तो आंखों में पानी आए बिना नहीं रहता. और कोई अगर उसे कभी गाता है, यू नो, किसी परफॉर्मेंस में या यू नो लाइक इंडियन आइडल में या किस कहीं पे भी अगर कोई ये गाना गा देता है, तो बस आंखें ऐसे भर आती है ना, ओ माय गॉड, यू कांट इमेजिन. मैं ऐसे रोती हूँ ना उस गाने पे. वेल मैं ये बताऊंगी नहीं अभी, लेकिन आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा. तो चलिए मैं आपको सीन बताती हूँ और आपको गेस करना है. एक लड़का बच्चा स्कूल में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, और बोर्डिंग स्कूल का जो यू नो बोर्डिंग स्कूल में से डाल दिया जाता है, और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक आर्ट टीचर से, और उसकी ड्राइंग टैलेंट और लर्निंग डिफिकल्टी को वो समझते हैं, जो उनके पेरेंट्स भी नहीं समझ पाए थे वो समझता है. आई मीन द आर्ट टीचर जो है वहाँ के वो समझते हैं. ओके, तो ये कौन सी फिल्म है जिसमें ऐसा सीन है जहाँ पे एक लड़का, छोटा लड़का, बच्चा यू नो स्कूल में स्ट्रगल करता है, लिखना नहीं आता उसे, ही हैज सम यू नो उसे लर्निंग डिफ़िकल्टी है. ओके, और वो बोर्डिंग स्कूल में उसे भेज दिया जाता है ये सोच के कि वो डिसिप्लिन नहीं है और नहीं यू नो ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट हिज स्टडीज़. लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आर्ट टीचर उसकी ड्राइंग टैलेंट और लर्निंग डिफ़िकल्टी को समझ के वो प्रॉब्लम असल में रूट कॉज क्या है वो जानते हैं और बताते हैं कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, यू नो. और तब उनके पेरेंट्स, ओह माय गॉड, इट्स सो इमोशनल. बताना कौन सी फिल्म है, और अगर आंसर पता हो तो कॉल करिए 8919998595 पर, और मुझे बताइए कि ये कौन सी फिल्म का सीन है. ओके, हिंट, आई डोंट थिंक इस हिंट की कोई भी ज़रूरत है, ये बहुत ही फैमिली वाली फिल्म है, तो आई एम श्योर ये बहुत लोगों को पता होगा. तो मैं इंतज़ार करती हूँ आपके आंसर का, और तब तक के लिए आप सुनिए ये गाना. कौन सा गाना बजाऊं मैं आपके लिए, देखो तो लुक्स इंटरेस्टिंग, देखते हैं. ओके,

0: किसी ने गेस किया है, तो जानते हैं किसने गेस किया है इस मूवी का नाम. ओके, हेलो,
1: हाय,
0: हाय, किससे बात हो रही है हमारी?
1: यस, कविता.
0: कविता. हाय कविता, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, थैंक यू. कैरी
0: वेल कविता, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: नॉर्थ कैरोलिना.
0: वंडरफुल. और आप क्या करती हैं?
1: आई एम इन मेडिकल फील्ड.
0: ओह, यू आर इन मेडिकल फील्ड. वाओ.
1: बट माय आंसर मे नॉट बी द राइट आंसर.
0: नो, प्लीज गो अहेड. लेट लेट मी सी, आपने क्या गेस किया है, आप बताएं हमें.
1: Yeah, I guess Lakshya, but I had a feeling it was Sare Zameen, whatever that. But I thought that was a song. I didn't know it was the name of a movie. So that's why I said, "Oh, is that the name of a movie or is it a song?" So I said, "Lakshya, I know as like a autistic person in there." So
0: Yes,
1: yeah.
0: yeah.
1: So anyway.
0: Well, the second guess is right, तारे जमीन पर.
1: Yeah, okay. Thank you.
0: Well, कविता, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. या कीप
1: You're
0: लिस्निंग टू
1: welcome.
0: रेडियो नायरा. बाय.
1: Yeah, okay. Thank you. Bye-bye.
0: तो देखा, पहले गेस किया रॉन्ग, लेकिन उसके बाद उन्होंने गेस कर ही लिया, बट उन्होंने स्टोरी एकदम सही बताई है ना, कितने अच्छे से बताया उन्होंने. वेल कविता, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. अच्छा लगा हमें आपसे बात करके. एंड उन्होंने जिस तरीके से कहा ना, मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, मुझे इतना डर लगता है ना जब कोई मेडिकल फील्ड में है बोलता है, तो पता नहीं क्या हो जाता है मुझे. ये हॉस्पिटल्स, ये मेडिकल फील्ड, इन सबसे ना मैं बहुत दूर रहती हूँ, टच वुड. लेकिन हाँ, डर लगता है मुझे ना ऐसे सुनते ही. वो कुछ होता है ना कि कोई कोई वर्ड्स को, कोई कोई चीज़ों को जब हम सुनते हैं तो या तो डर लगता है, या तो बहुत खुशी होती है, या तो एंग्जाइटी होती है. तो उसमें ये वाले वर्ड्स में ना मुझे थोड़ी सी थोड़ा सा डर लगता है. दैट्स सो फनी है ना. वेल देखा क्या चल रहा है गेम, सब गेस करते जा रहे हैं. तो आगे और गेस करते हैं. तो इन मूवीज में क्या होता है ना, थोड़ी मूवीज अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वो मूवीज हम ना अपने फैमिली के साथ एकदम आराम से बैठ के देख सकते हैं, और थोड़ी मूवीज होती है मतलब क्या करेंगे, क्या कहेंगे, पापा यहाँ से घूर रहे हैं, या फिर मम्मी वहाँ से देख रही है, या फिर रिमोट ढूंढ रहे हैं हम लोग, कैसे चेंज करें. ऐसा फनी, इतने फनी सीन्स हुए हैं ना ये मूवीज़ के चक्कर में. और कभी कभी इतने इमोशनल हो जाते हैं, पूरी फैमिली के साथ देखते रहते हैं और इतना इमोशनल कि अपने आंसू, अरे मुझे रोना नहीं है, आई कांट क्राई, सब हंस पड़ेंगे. ये वाला एक सीन आता है जिसमें हम हंस मतलब रोना चाहते हैं, लेकिन यू आर जस्ट कंट्रोलिंग, नहीं मैं नहीं रोऊंगी अभी, ऐसा वाला. और हम देखते रहते हैं कौन रो रहा है, कौन इमोशनल हो रहा है. और बताए, मैं ना देखते देखते ना सबसे ज़्यादा इमोशनल शायद मैं ही होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है. जब भी मैं मेरी फैमिली के साथ देखती हूँ कोई भी मूवी, ओह माय गॉड. और हंस, अगर कोई कॉमेडी वाली मूवी है ना, उतने ही जोर से मैं हंसूंगी, ऐसा होता है यार मेरे साथ. क्या क्या मतलब, हर एक अनोखी चीज़ ना सिर्फ मेरे साथ होती है लगता है मुझे. तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. इट्स 5:38 PM एंड द नेक्स्ट थिंग, लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंडशिप, ट्रैवल एंड सीन राउंड नंबर टू. तो वेल, आप सब सुन रहे हैं मुझे, दैट्स हेलो वैष्णवी विथ योर होस्ट वैष्णवी. और अब बात करते हैं उन मूवीज़ की जो देखने के बाद हम तुरंत फ्रेंड्स के ग्रुप में मैसेज कर देते हैं, चाहे वो गर्ल्स ट्रिप हो या गाइस ट्रिप हो, या फिर लिखते हैं हम लोग गाइस ट्रिप प्लान करते हैं, सबसे पहले इतना मोटिवेशन आ जाता है. फिर एक फ्रेंड डेट्स पूछते हैं, एक बजट पूछते हैं, और तीसरा सिर्फ मैसेज लाइक करके गायब हो जाता है. राइट, ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं. फ्रेंड्स में एक होता है जो सिर्फ मैसेजेस को लाइक करता है, बातें नहीं करेगा वो, है ना. आपके ग्रुप में कौन कौन ऐसा मतलब कौन कौन है जिनके रोल्स ऐसे ऐसे डिवाइडेड हैं, आप कौन हो उनमें से, या मैसेज लाइक करने वाले हो, या फिर चलो भाई सब बजट बना दिया है लेकिन फिर आप जाते ही नहीं हो उस ट्रिप पे, इसमें ये रोल प्ले करते हो, कौन सा रोल है आपका. और मूवीज में ट्रिप प्लान इट्स लाइक मॉन्टेज ना, मॉन्टेज हो जाता है, जैसे हमारी रियल लाइफ में पहले लीव अप्रूव, फिर फ्लाइट, फिर कौन ड्राइविंग करेगा, और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन, कहाँ खाना कहाँ कहाँ मिलेगा. दैट्स अनदर पर्सन इन द ग्रुप जो पूछता है, अरे खाना तो अच्छा होगा ना. और लेकिन जब ट्रिप हो जाती है तो फोटो से ज़्यादा वो छोटी छोटी मोमेंट्स याद आने लगती है, अरे कितना मज़ा आया ना. राइट, ऐसा होता है. तो इन्हीं के साथ मेरे पास एक और अभी ओके द सीन जिसको मैं अभी बताने वाली हूँ, वो है गांव के लोग अंग्रेज ऑफिसर्स के अगेंस्ट क्रिकेट खेलते हैं. गेस कर लिया? ओके. गांव के लोग जो हैं वो अंग्रेजों के अगेंस्ट में क्रिकेट खेलते हैं. मैच का रिजल्ट उनके टैक्स का फ्यूचर डिसाइड करेगा इसमें. ऐसा होता है उस मूवी में. कौन सी फिल्म है वो? डिड यू गेट इट? गांव के लोग अंग्रेज ऑफिसर्स के अगेंस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और उनका जो मैच है वो क्यों खेल रहे हैं भाई? अगेंस्ट क्यों खेल रहे हो? अंग्रेजों के खिलाफ क्यों खेल रहे हो? तो मैच का जो भी रिजल्ट होगा, अगर वो जीत गए तो उसके हिसाब से उनका टैक्स का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होता है. वो कौन सी फिल्म में है ऐसा होता है? तो आप अगर गेस कर रहे हो तो बता दीजिए. वेल, मैं आपको छोटी सी हिंट भी दे ही देती हूँ. टीम को भुवन लीड करता है इसमें, इस सीन में. अगर आपने गेस किया है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं एट 919-999-8595 पर और बताइए कौन सा है सही आंसर. ओके, तो मिलते हैं थोड़ी ही देर में. तब तक आप सोचिए, थोड़ा तो सोचना बनता है.
2: At Triangles Biryani in Morrisville, we are elevating the art of biryani with unmatched quality and flavor. From the finest hand-picked spices to the freshest vegetables and premium meats, every dish is a masterpiece. Don't miss our signature Kuku Pulav, a culinary delight available with chicken, goat, paneer, shrimp or fresh vegetables. It's fresh, flavorful and exclusive to the East Coast. Start your feast with sizzling appetizers, perfectly paired with your favorite hot drinks. Indulge in our weekday unlimited thali, a bountiful spread available in vegetarian and non-vegetarian options. Unwind with our signature cocktails like Pushpa the Fire, Classic Margarita, Old Fashioned, Negroni or Jungle Bird. Visit us today at 4121 Davis Drive, Morrisville or call 919-377-1029. Triangles Biryani. Fresh, flavorful. At Triangles Biryani in Morrisville, we are elevating the art of biryani with unmatched quality and flavor. From the finest hand-picked spices to the freshest vegetables and premium meats, every dish is a masterpiece. Don't miss our signature Kuku Pulav, a culinary delight available with chicken, goat, paneer, shrimp or fresh vegetables. It's fresh, flavorful and exclusive to the East Coast. Start your feast with sizzling appetizers, perfectly paired with your favorite hot drinks. Indulge in our weekday unlimited thali, a bountiful spread available in vegetarian and non-vegetarian options. Unwind with our signature cocktails like Pushpa the Fire, Classic Margarita, Old Fashioned, Negroni or Jungle Bird. Visit us today at 4121 Davis Drive, Morrisville or call 919-377-1029. Triangles Biryani. Fresh, flavorful.
3: What if feeling better started with restoring your inner balance? Stress, emotional heaviness, low energy. Sometimes your body and mind are simply asking you to pause, reset, and recharge. Discover Pranic Healing, a practical non-touch practice that works with life force to support greater calm, clarity, energy, and well-being. Experience it first at a free Twin Hearts meditation and healing session every Thursday at 7 p.m. Ready to go deeper? Join the beginner-friendly Level 1 Basic Pranic Healing class September 26th and 27th in Kerry or October 3rd and 4th in the Charlotte area. Tuition is $495. Pranic Healing complements professional care. Register at pranichealingnorthcarolina.com or call 252-410-2268. Pranic Healing North Carolina. Restore your energy, restore your balance, rediscover yourself.
0: वाकई में प्राणिक हीलिंग किसी ने अगर ट्राई नहीं किया है तो प्लीज ट्राई करिए. बहुत ही अच्छा है एंड इट रियली विल चेंज योर थॉट प्रोसेस, योर एनर्जी एंड एवरीथिंग. वेल, हम लोग खेल रहे थे तो अभी किसी ने गेस कर लिया. खेल रहे थे, मैं क्या बोल रही हूँ ना. वेल, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर किसी ने गेस किया है और हमारे हैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
4: Hi.
0: Hi. Who is this?
4: This is Ruchi.
0: Hi, Ruchi. कैसी हैं आप?
4: बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छी. आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल बढ़िया, as always.
4: बिल्कुल That's nice. आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगता है.
0: थैंक यू.
4: मैं जनरली ये बैठती है सब सुनती हूँ आपका, बहुत अच्छा लगता है.
0: थैंक यू सो मच. लवली. इट मीन्स अ लॉट यू नो, जब ऐसे कुछ हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है.
4: हम लोग को एंटरटेन करना, हम लोग अपने इंडिया से कनेक्ट कराना, इट्स रियली गुड थ्रू बॉलीवुड. इट्स रियली नाइस.
0: थैंक यू रुचि. थैंक यू सो मच. वेल, अगर आपने सवाल का जवाब गेस कर लिया है तो प्लीज गो अहेड एंड टेल अस द आंसर.
4: आई थिंक दैट इट्स लगान.
0: एब्सोल्युटली.
4: आमिर खान मूवी लगान.
0: बिल्कुल.
4: दिस इज माय वन ऑफ माय वेरी फेवरेट मूवी. सो आपने जैसे ही बोला मैं तभी आई शुड कॉल यू लेट यू नो.
0: That's amazing. बहुत ही प्यारी मूवी है जैसा आपने कहा. इसमें यू नो हर तरह के इमोशन से, एक तो कॉम्पिटिशन वाला, एंड देन यू नो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन द मूवी टू बी ऑनेस्ट.
4: राइट. है ना. टीम बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग दिखाई है कि मजा आ जाता है सुन करके, देख करके पिक्चर को.
0: बिल्कुल बिल्कुल. या मैंने ये सवाल इसलिए किया, हमारे इससे थोड़ी देर पहले एक कॉलर है जो क्रिकेटर है वो भी, एंड स्नेहा. या शी सेड स्नेहा. यस. तो वो भी क्रिकेट खेलती है यू नो, सो उनकी टीम है. दैट्स व्हाट शी वाज सेइंग ट्रायंगल में. तो या आई मीन उसको वो सुना मैंने तो मैंने सोचा चलो ये क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. बहुत मजा आया. आप वैसे कहाँ से बात कर रही हैं?
4: मैं कैरी
0: से. हाँ. वंडरफुल वंडरफुल अमेजिंग. और बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं इस महीने में, तो आई एम श्योर यू वुड हैव प्लान्ड योर वीकेंड. यू नो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं. या आई मीन टुमारो यू हैव, देर आर टू इवेंट्स. वन इज़ अनुपम खेर जी का शो प्ले है जो कि जाने पहचाने अनजाने, एंड देर इज़ अनदर अ ब्यूटिफुल पोएट नायाब मिदा जो कर रही हैं कल. यू नो उनका भी एक शो है. इट्स टुमारो. यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कैलेंडर में कौन सा रखें. सारे एक ही टाइम पे होते हैं. वेरी गुड इवनिंग. नाइस वॉकिंग. दैट्स रियली गुड फॉर हेल्थ. या कीप लिसनिंग टू रेडियो. बाय बाय रुचि. थैंक्स फॉर कॉलिंग. तो ये थी रुचि जिन्होंने कॉल किया और एग्जैक्टली उन्होंने सही आंसर बता दिया हमें. दैट्स लगान. ऑफ कोर्स लगान, जिसमें टैक्स रिलेटेड होता है ना. क्या होता था, मतलब मैं थोड़ा सा पीछे जाके सोच रही हूँ ना तो मुझे लगता है क्या क्या होता था. अच्छा मैं पैदा नहीं हुई थी. मुझे थोड़ी चीज़ों को देख के ऐसा लगता है ना कि थैंक गॉड सारी मुसीबतें ख़त्म होने के बाद शायद हम इस ज़मीन पे आए हैं. लेकिन नहीं, मतलब ऑफ कोर्स देर आर प्रॉब्लम्स स्टिल. अभी भी बहुत कहीं कहीं क्या क्या चल रहा है. अब तो फुल AI बोर्ड में है. हम लोग एक्टिवेटेड हैं. सिंपल भी है थोड़ा बिकॉज ऑफ AI, लेकिन उसी तरीके से AI की वजह से काफ़ी यू नो द क्रिएटिविटी इज़ नॉट कैसे कहें लाइक अब दिमाग का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ना वो ऑथेंटिसिटी, जैसे आप कोई आर्ट वर्क में करते हो या फिर आप कुछ एनीथिंग इट कैन बी यू नो, उसमें जो वो प्योरिटी दिखती है ना, आप शायद थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा ऐसे दाग लग गया है, फेड हो गया ऐसा लगता है मुझे बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी एंड होल थिंग. बट yeah, बट हम लोग यूज हमें करना ही है. वी हैव टू यू नो स्टैंड विथ एवरीबॉडी टू बी इन द कॉम्पिटिशन एंड टू बी द फर्स्ट. या तो वो है, बट ठीक है, मतलब अब टाइम के हिसाब से सब कुछ बदला है तो ठीक है. बट या वही, मतलब पहले क्या सोचती हो तो बस वही थोड़ा सा वो लगता है मुझे. ओ माई गॉड, कितने लोगों ने क्या क्या किया अपने देश के लिए. वाह, उनसे मतलब उनके लिए तो बस क्या मतलब हाथ जोड़ने का ही मन करता है, बस और कुछ नहीं. इतनी इज्जत. तो चलिए इसी के साथ अब है 5:49. वेल, मैं आपको गाने पर ही छोड़ देती हूँ अभी, एंड लेट्स कनेक्ट आफ्टर. ओके, एक और सवाल करके छोड़ती हूँ. चलिए, और एक मूवी मुझे एक और सीन याद आया. लेट मी give you that question and uske baad aap call kariyega agar aapne guess kar liya hai. Call kar sakte hain at 919-999-8595 par. To sawal hai, teen dost road trip, hum trips ki baat kar rahe the na, to ye usi mein se aaya abhi mere dimag mein ki teen dost jo hote hain wo road trip par Spain jaate hain. Oh, beautiful place man. Spain jaate hain aur ek sky diving aur ek scuba diving aur ek running with the bulls experience unke fears ko challenge karta hai us movie mein. To kaun si movie hai wo? Ye bhi I think I don't know ladkiyon ke liye kitni matlab ye movie kitni achhi lagti hai lekin ladkon ke liye it's like ek benchmark bana diya tha is movie ne jab ye aayi thi and I think till date sabko pasand hai ye almost everybody and ye movie sochne pe majboor kar deta hai ki ha matlab what am I doing man it's everyday 8 to 5 kuch aur karta hu kuch aur karti hu aise sochne pe majboor kar diya is movie ne aur bahut zyada satisfaction mila jab is movie ko dekha to ye kaun si movie hai agar aap jante hain to It's full of life. ये movie full of life है जिसमें आया लेकिन जो उसका जिस तरीके से define किया है ना about life that is interesting in this movie. तो वो है तीन दोस्त जो trip पर जाते हैं Spain. कितने लोग गए हो Spain पे आप में से? मैं तो नहीं गई but है मेरे list में. तो एक स्काई डाइविंग एक स्कूबा डाइविंग और एक रनिंग विद द बुल्स एक्सपीरियंस उनके फियर्स को चैलेंज करता है. ठीक है, ये कौन सी मूवी का सीन है? आपको मूवी का नाम गेस करना है और हो सके तो आप इसमें एक्ट्रेस जितने भी हैं तीनों, अच्छा मैंने हिंट भी दे रही हूँ तीन है हिंट तीन, तो उनके भी नाम आप बता सकते हैं. और अगर आपने सही गेस किया तो कॉल करिए एट 919-999-8595 पर. इट्स 5:51 PM राइट नाउ. देखते देखते 1 hour. लेट्स सी हु विल गेस दिस अमेजिंग ब्यूटिफुल मूवी का नाम.

जैसे युवती नहीं सर पे चढ़ी है जैसे कोक में रम, बातें बातें करती है कम, ए बी सी डी उसकी होती एफ से शुरू और यू पे खत्म।

0: नाइस सॉन्ग, शी इज ऑन फायर माय बादशाह। वेल, हमारा सवाल था और उसका आंसर भी गेस किया, इतने कॉल्स आ रहे थे तो चलो मैंने सोचा मैं नेक्स्ट गाना बजाने से पहले आंसर सुन लेती हूँ। आई एम श्योर ये बहुत लोगों को पता है, एंड उसमें से जिसने भी गेस किया है ना, आई एम सो हैप्पी जिसने भी गेस किया ये। सो देखते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाय, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हाय, मेरा नाम विधि है।
0: हाय विधि, हाउ आर यू?
1: I'm good. How about you?
0: I'm good, Vidhi. Thank you so much. कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं मॉरिसविल से बात कर रही हूँ।
0: Oh, काफी लोग मॉरिसविल पे एक्टिव है आज। Everyone is from Morrisville, most of them. चलो बाकी लोग, बाकी places को भी हम थोड़ा encourage करेंगे ताकि वो भी इसी तरीके से एक्टिव हो जाए।
1: All right.
0: Well, so, sorry, I, Vidhi, right? Vidhi, nice name, Vidhi.
1: Vidhi, yes.
0: Okay, so Vidhi, आपने guess कर लिया है, तो आप बता दीजिए कौन सा movie है ये?
1: So, the movie का नाम है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा।
0: Wonderful, lovely, मुझे यही सुनना था।
1: And actually, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं भी रिसेंटली स्पेन जाके आई, तो मैं और एक्साइटेड थी जब आपने ये सवाल पूछा, तो आई वाज लाइक चलो अब तो मुझे कॉल करना ही पड़ेगा।
0: क्या बात कर रहे हो, वाओ, यू नो आई बिलीव इन टेलीपैथी।
1: यस,
0: उस तरीके का ही हुआ अबे, दैट्स नाइस कनेक्ट, यू नो। वेल, कैसा था स्पेन, कैसा था आपका वेकेशन?
1: बहुत ही वाइब्रेंट एंड लोग इतने चीयरफुल है, मतलब मुझे तो बहुत सिमिलैरिटी लगी इंडिया से। मतलब लोग इतने चीयरफुल हैं, इतने लाइवली हैं, वहाँ पे खाने पीने का कल्चर भी इंडिया जैसा लगता है, मतलब जीने का तरीका रही जो मूवी में भी पता है कि खुल के जियो, एंजॉय करो अपनी लाइफ, हर एक मोमेंट बहुत ही प्रेशियस है, तो वो मुझे बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस मिला मुझे वैसे टाइप का।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मतलब सब बहुत ही अच्छे थे, सारे ड्राइवर्स अच्छे थे, टैक्सी ड्राइवर्स, आपको कुछ भी पूछना है आपसे इतनी बातें करेंगे, बहुत अच्छा लगा। जगह तो बहुत ही है ही अच्छी, लोग भी बहुत अच्छे थे।
0: ओह वाओ, दैट्स सो नाइस, आपको बहुत मजा आया वहाँ पे, एंड आई एम श्योर आपको जब मैंने ये सवाल किया तो आपने पूरा यू नो यू जस्ट गॉट द मेमोरी कि हाँ मैं स्पेन में गई थी तो ऐसा ऐसा था। डिड यू जस्ट कनेक्ट?
1: डेफिनेटली डेफिनेटली, एक बार तो जाना ही चाहिए सबको, मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि एक बार जाना चाहिए।
0: ओह वाओ लवली, तब तो मुझे जाना चाहिए। या ऑफ कोर्स, वेल बहुत अच्छी जगह है, मैंने भी काफ़ी सुना है। वेल आई हैव बीन टू फ्यू प्लेसेस इन यूरोप, जैसे कि यू नो सेंटोरिनी एंड ग्रीस, सो इवन दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, अगर एथेंस एंड सेंटोरिनी, मतलब बहुत अच्छी जगह है। मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ, पता है जब मैं कोई जगह जाके आती हूँ मैं बोलती हूँ ये तो पक्का जाने वाली जगह है।
1: Definitely.
0: थोड़ी मतलब थोड़े प्लेसेस, हाँ थोड़े। क्या कहा?
1: नहीं, मैं भी वही बता रही थी कि मुझे ऐसा मन है कि भाई एक दिन पूरा यूरोप घूम लो, यू नो।
0: नाइस, वेरी नाइस,
1: उतना ऑफ कोर्स
0: बिल्कुल घूमना चाहिए, वो तो डेफिनेटली यू नो इट गिव्स यू दैट रिफ्रेशमेंट कि आप कुछ और सोचे और थोड़े मजे करें और लाइफ को हमेशा चेयरफुल रखें। वेल, आपने उसी तरीके से इस मूवी का जो नाम गेस किया, दैट्स अमेजिंग, वो उसी तरीके से मूवी में भी बताया कि लाइफ शुड बी चेयरफुल, शुड यू शुड बी हैप्पी, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट वर्क। सो या एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग विधि, नाइस टॉकिंग टू यू एंड वेलकम बैक टू US।
1: या थैंक यू।
0: All right, bye bye, take care.
1: Bye, take care.
0: तो ये थी विधि, वाओ क्या गेस किया उन्होंने, और देखो तो सही मेरे सवाल में ही वो घूम के भी आ गई है स्पेन, और मैं सब सोच रही थी कि स्पेन जाएंगे तो अच्छा लगेगा, वाओ क्या बात है। सो दैट्स हाउ यू नो थिंग्स जस्ट कनेक्ट, एंड या मैं कह रही थी टेलीपैथी के बारे में, तो डेफिनेटली देर इज समथिंग, यू नो इट्स कोइंसिडेंसेस तो होते ही है, लेकिन आई बिलीव इन काइंड ऑफ टेलीपैथी, हम सोचते रहते हैं किसी के बारे में या किसी जगह के बारे में एंड इमिडिएटली उसी चीज़ के रिलेटेड या उन्हीं लोगों के रिलेटेड बातें या उनका ही कॉल आ जाता है या उनसे ही बातें हो जाती है, राइट? तो या वो मिल जाते हैं हमें, यू नो जस्ट यू डोंट आउट ऑफ नोवेयर कहीं भी मिल जाते हैं, तो ये होता है पावर ऑफ यूनिवर्स कहूँगी मैं इसे, एंड द वे यू विल मैनिफेस्ट यू विल गेट दैट, राइट? तो नाइस गेस, थैंक यू सो मच विदी फॉर कॉलिंग। एंड अभी आपके लिए आ रहा है एक अमेजिंग गाना और इसके बाद हम मिलेंगे फिर आफ्टर 6 o'clock. इट्स ऑलरेडी 6 मैन, 5:59 p.m.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: Naira 101.9 FM, Raleigh, Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi. 99.9, Naira me kho jao, Pakka Desi.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा एंड दिस इज लाइव शो हेलो वैष्णवी विद योर होस्ट वैष्णवी. तो वी आर एट 6:01 PM, देखते देखते 1 आवर. ओ माय गॉड, दैट वाज सो ग्रेट टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम मॉरिसविल केरी. और मॉरिसविल से तो आई थिंक 3 लोगों से बात हुई आज हमारी, बहुत अच्छा लगा. एंड सब लोगों ने बहुत मस्ती की है लास्ट 1 आवर में मूवीज़ के नाम गेस करके. एंड जिस तरीके से कनेक्ट भी किया उन्होंने, उन्हें अच्छी लगी वो मूवी. एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं आपको अच्छी मूवीज़ के सीन बता रही हूँ. तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी द नेक्स्ट क्या दूं मैं आपको. ओके, चलो हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो लेट मी गिव यू अनदर मूवी अगेन विच इज ऑफ यूरोप. उसका सीन है, उसमें होता है ये. ओके, ध्यान से सुनना, मैं सीन बता रही हूँ और आपको मूवी का नाम गेस करना है. ओके,

आपने गेस किया है, तो आप कॉल करिए 8919998595 पर और हमें बताइए इस मूवी का नाम। बहुत ही सिंपल सा नाम है इसका, और ये भी बहुत सुपर डुपर हिट थी। आई मीन यू नो, फॉर मी इट्स अ सुपर हिट। और उसमें जिस तरीके से एक्टिंग की है हीरोइन ने, दैट्स नेक्स्ट लेवल मैन। लीड कैरेक्टर ने अपने आप को छा गई मूवी है सबके दिलों में। तो देर किस बात की, आप गेस करिए और हमें बताइए कि ये कौन सी मूवी है। और आज बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि सब लोग इतनी सारी मूवीज़ के बीचों में से मैंने इन मूवीज़ को ढूंढा और सब लोग अच्छे से गेस कर पा रहे हैं। दैट्स रियली गुड। और आपको बता दूँ कि कल, दैट्स फ्राइडे, अच्छे अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं RTP में। यू हैव जाने पहचाने अनजाने अनुपम खेर जी का शो है, प्ले है, प्ले है, एंड दैट्स एट रैली मेमोरियल, तो एट 8 o'clock। तो अगर आपने टिकट्स नहीं लिए तो ले लीजिए और जाइए, बहुत ही अच्छी प्ले है। बिकॉज वी हैड यू नो अनुपम खेर जी एंड स्वरूप स्वंपत जी एट स्टूडियो, रेडियो नारा स्टूडियो ऑन तेलुगू, जो कि आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। एंड द वे ही सेज ओम नमः शिवाय, वाओ मैन, क्या बताया उन्होंने। ही सेड ओम नमः शिवाय, यू नो, वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। माई फेवरेट लॉर्ड इज शिवा, तो मुझे ऑफकोर्स अच्छा लगेगा। तो देखा किस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, किसी के बातों से कनेक्ट हो जाते हैं, किसी के तरीकों से हम कनेक्ट हो जाते हैं, या किसी के यू नो द एक्टिविटीज़ दे डू, या फिर कोई बात से, या फिर कोई गाना गाते हैं तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग। कितना अमेजिंग है लाइफ, इज़न्ट इट सो अमेजिंग। बहुत ही मतलब टच हो गया, बहुत अच्छी लाइफ है। वी शुड बी रियली ग्रेटफुल दैट वी आर ऑन दिस अर्थ एज ह्यूमन बीइंग। एंड वन थिंग टू से दैट वी शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी काइंड एंड ग्रेटफुल। मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि बी ग्रेटफुल एंड बी वेरी वेरी काइंड, जितना हो सकता है उतना काइंड रहने की कोशिश करिए। अगर नहीं है तो सीखिए किस तरीके से काइंड रहते हैं, अगर है तो फिर यस यू आर ऑन राइट पाथ, राइट ट्रैक। इट्स एंड ऑफ द डे इट्स ऑल ह्यूमन बीइंग जो यहीं पर है, यू नो, ऑन दिस प्लैनेट, एंड वी ऑल आर कनेक्टेड समहाउ बाय दिस यूनिवर्स। तो वेल, हो गया ये, थोड़ा फिलोसफिकल नहीं जाना था मुझे, मैं चली गई बोलते बोलते तो अगर आपने गेस किया तो कर लेना, मैं फिर से सवाल बता देती हूँ, शायद बीच में कहीं और चला गया ये। सो एक ब्राइड की वेडिंग कैंसिल हो जाती है, वो अपने हनीमून पर अकेली पेरिस और एम्स्टर्डम जाने की डिसीजन ले लेती है, वो कौन सी मूवी। अगर आपने गेस किया है तो कॉल करिए 8919998595 पर, और तब तक के लिए सुनिए ये गाना।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा एट 99.9 FM HD4, 101.9 FM एंड 1490 AM पर, और आप हमें सुन सकते हैं एट वेबसाइट www.radionaira.com, दैट्स स्ट्रीमिंग, सो आप वहाँ पे भी हमें सुन सकते हैं, और आप हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में भी सुन सकते हैं, जैसे कि अगर आप कहे अलेक्सा, या आप कहे ओके गूगल, या आप कहे हे सिरी, तो आप कहीं भी कहीं पर भी जो भी कर रहे हैं, यू नो, इफ़ यू वांट टू लिसन टू म्यूज़िक, टॉक, न्यूज़, एंटरटेनमेंट या फिर लाइव शोज, देन यू कैन लिसन अस फ्रॉम एनीवेयर, दैट्स व्हाट आई मेंट, ओके। और ऑफ कोर्स आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड रेडियो नायरा। अगर आप आई स्टोर, यू नो, एप्पल स्टोर में, यू कैन जस्ट टाइप रेडियो नायरा एंड यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, और इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड, देन ऑफ कोर्स यू कैन टाइप रेडियो नायरा ऑन गूगल प्ले एंड देन यू कैन डाउनलोड आवर ऐप एंड लिसन टू अस, पता नहीं है ना। वेल, तो वी स्टार्टिंग एट 6:12 PM, देखते देखते समय तो बस निकला जा रहा है, दिन निकलते जा रहे हैं, न्यू ईयर भी बहुत करीब है। फिर से लिखो, अब अपने अपने रेजोल्यूशंस लिखना शुरू किया है या नहीं किया है अभी भी? सब लिखते हैं यार, सब लिखते हैं, यू नो, ट्रस्ट मी, मैं तो इतने रेजोल्यूशन लिख चुकी हूँ, पता नहीं उसमें से कितने ही पूरे हुए हैं और कितने मैंने डेफिनेटली सोच के नेक्स्ट ईयर के लिए शुरू किया है। बट लिखना ज़रूरी है, यू नो, इवन दो अगर आप आज भी लिख रहे हो एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग, स्टिल ओके, बट लिखना मत छोड़ना, क्योंकि जब आप लिखते हो ना, आप सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? और कभी ना कभी आप ज़रूर उसे कर दोगे एंड ज़रूर वो पालोगे जो जिस चीज़ के लिए आपने वो रेजोल्यूशन बनाई है और सोचा है और जिसे आपने लिखा है। तो लिखना, डेफिनेटली, फॉर श्योर लिखना। और बहुत लोग लिखते हैं, बहुत अच्छी आदत है, उनसे पूछना कभी कि क्यों लिखते हो इतना, वो बताएंगे आपको उसके बारे में। सो दैट्स अनदर थिंग एंड इट्स वेरी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ड्रीमिंग, यू नो, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, दैट्स द बेस्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ, ड्रीम करते रहना चाहिए। मेरे पापा ना हमेशा बोलते रहते, सोचो तो सही, किसी चीज़ के बारे में सोचो तो सही, सोचोगे ही नहीं तो फिर मिलेगा कैसे, करोगे कैसे, और भगवान कब बोलेंगे, भाई कुछ तो सोचो, मैं क्या दूँ तुम्हें, तुम आके जो इतना मेरे सामने माथा टेक रहे हो लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, राइट? हम भगवान को ही कन्फ्यूज़ कर देते हैं। मुझे कभी कभी लगता है, मैं पता है कभी कभी सोचती हूँ, मैं जब मंदिर जाती हूँ ना, मैं लाइक इतने सारे चीज़ें बोलती हूँ, मैं सोचती हूँ आप कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, लाइक इट्स सो गुड व्हेन यू टॉक टू गॉड, इट्स सो गुड मैन, ट्रस्ट मी, अगर किसी ने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करना, जस्ट व्हेन यू घर पे या फिर व्हेन यू गो टू टेंपल और जो भी, जिससे भी मानते हो, जो भी भगवान है, राइट, आप उनसे बात करके देखो बस, ओह यू विल फील लाइक ये तो मेरे दोस्त हैं, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। और ऐसा लगता है एक मिनट के लिए तो जब हमारी कोई भी इच्छाएं या प्रॉब्लम्स हो या कोई भी चीज़ अगर हम बांटना चाहते हैं तो जब हम कह देते हैं ना उसे, तो इतना गुड फील होता है ना, ट्रस्ट मी, ओह माय गॉड, है ना, कहना हम ये, दिस इज़ लाइक ए प्रैक्टिस होना चाहिए ये। और इससे पहले मैं सवाल मैंने किया था, मैं लेट मी गो बैक देयर, वो जिस फिल्म के मोड में हम लोग थे और मैंने पूछा था कि वो चली जाती है हनीमून पे अकेले, वो भी, यू नो, टू पेरिस एंड देन एम्स्टरडम, क्योंकि उसकी शादी टूट जाती है उसमें, उस मूवी में, तो वो दैट्स क्वीन, उसका आंसर है क्वीन, राइट? अब मैंने बता दिया क्योंकि शायद कॉलर्स को, आई मीन आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगा होगा, एक चलो मैं खुश हूँ कि एक सवाल तो मैंने डिफ़िकल्ट पूछा, वरना पूरे के पूरे गैस करे जा रहे हो आप लोग, टू स्मार्ट मैन, ठीक है। तो वो था क्वीन। और नेक्स्ट, बिफोर आई टेल यू वो मूवी का सीन, मैं उसमें से सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी, उस मूवी में होता है हर बार जादू की झप्पी, हर बार, यू नो, यू आर सैड, जादू की झप्पी से सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वाला सीन होता है उसमें, उस मूवी में, राइट? और जैसे ही, मतलब व्हेन यू हग समवन हु इज़ इन पेन, उनको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है दिल हल्का हो गया हो, राइट? और
आंखों में आंसू ऑफ कोर्स, वो खुशी से आते हैं और वो बहुत अच्छा फील करते हैं, ऐसा हल्का हो जाता है उनका दिल। तो उस मूवी में भी उसी तरीके की चीज़ें होती है। और वो कहता है एक जादू की झप्पी में ना इट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड इट विल कीप यू वेरी वेरी हैप्पी उसके बाद। तो ऐसा सीन है उसमें। आप मुझे बताना कि वो कौन सी मूवी में ये सीन है जहाँ पे जादू की झप्पी के बारे में बात की गई है, ठीक है? और अगर आपने गेस कर लिया है इस मूवी का नाम तो आप हमें कॉल करके बताइए एट 919-999-8595 पर। ओके गाइस, तो मैं वेट करूँगी, देखते हैं किसने गेस किया है। मैंने ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया लेकिन जादू की झप्पी इज़ अ बिगेस्ट हिंट फॉर यू, लाइक यू नो बहुत ही बड़ा हिंट है ये, उसका आंसर सबको पता होना चाहिए। ये कोई एग्जाम का सवाल नहीं है, नहीं पता है चलेगा, ओके? बट अगर पता है तो आप कॉल कर सकते हैं 919-999-8595 पर और बताइए कि कौन सी मूवी का सीन है। ओके ऑलराइट, वेल अब दिवाली भी पास आ रही है और आपको पता होगा कि हम सब दिवाली, जो बहुत ही अच्छा इवेंट, बहुत ही बड़ा इवेंट है, वो भी होने वाला है अक्टूबर 10th को। तो तैयार हो जाइए, शॉपिंग करिए, अच्छी सी ड्रेस खरीदिए और यू नो जस्ट कम ऑन देयर यू नो एंड हैव ग्रेट सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली विथ हम सब। एंड देर इज़ अनदर इवेंट विच इज़ हैपनिंग, चांदनी रास, दैट्स ब्यूटिफुल इवेंट, वाइट एंड वाइट में, चांदनी कहते हैं सफ़ेद, तो बहुत ही यूनिक स्टाइल में ये एक गरबा डांस होने वाला है। तो उस इवेंट के लिए भी शॉपिंग कर लेना बिकॉज दैट्स कम्प्लीटली वाइट एंड वाइट। सो एक मौका मिल गया ना आपको शॉपिंग करने का, उससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो ये मंथ इज़ अ मैजिकल मंथ अक्टूबर, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और सारे इवेंट्स में अच्छे से सज के अच्छे से इंजॉय करिए। और भूलिए मत, हम लोग गेम खेल रहे हैं तो उसमें अगर मूवी का नाम आपने गेस कर लिया है जिसमें है जादू की झप्पी के बारे में, तो मुझे कॉल करिए 8919-999-8595 पर। और तब तक के लिए सुनिए ये गाना।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा एंड दिस इज लाइव शो हेलो वैष्णवी एंड वी हैव अ कॉलर। हेलो
1: हेलो,
0: हाय, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हाय, दिस इज प्रीति।
0: हाय प्रीति, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड प्रीति, थैंक यू सो मच। कहाँ से बात कर रही हैं आप? एपेक्स, लवली। ओके, वी हैव एपेक्स कॉलर टुडे। मैं सोच ही रही थी कहीं और से कॉल क्यों नहीं आया। यू आर द फर्स्ट पर्सन कॉलिंग फ्रॉम एपेक्स टुडे। ओह लवली, ओके। वेल, हम लोग गेम खेल रहे हैं तो आपने गेस किया कौन सी मूवी में, यू नो, जिसमें जादू की झप्पी ज्यादा बार यूज हुआ था। व्हाट्स द मूवी नेम? Wonderful, lovely, बिल्कुल ना। Do you believe in that, Preeti?
1: Yes, I believe in magical jhappi. I believe in jadoo ki
0: jhappi. Yeah, absolutely, it works, right?
1: Yes.
0: Wonderful, nice guess. Well, आप क्या करती हैं प्रीति?
1: I'm into HR.
0: Mm-hmm.
1: For the company as a
0: HR. Wow, that's amazing. So all the listeners, please call Preeti.
1: Yes,
0: okay, she is into HR and ab sabko zarurat hai HR ki, sab log darte hain HR se. So yeah Preeti, aise kisi ne bola hai Preeti HR mein ho to aap se darte hain koi?
1: नहीं,
0: डरने के लिए तो किसी ने नहीं बोला आज तक। मतलब आप कनेक्टेड रहती हैं सबसे, तो दैट्स अ अमेजिंग रोल विच यू आर डूइंग। गुड गुड एंड थैंक यू फॉर गेसिंग द राइट यू नो फिल्म नेम। Thank you so much for calling and listening to Radio Naira. That's so nice.
1: Yeah, it's a pleasure. So everybody in my family, they love listening to Hindi songs and they love Radio Naira.
0: Oh, thank you so much. That means a lot. Thank you so much.
1: Sure. Yeah. Thank you.
0: All right, Preeti. Thank you so much for calling. Bye-bye.
1: Bye.
0: So, ye thi Preeti. Kya baat hai na? लाइक शी इज टू एच आर। मैं वैसे मजाक कर रही थी, डरने की बात नहीं, लेकिन या एच आर यानी थोड़ा सा वो होता है ना कि आप संभल के रहते हो। ऐसा नहीं, वेल हाउ एवर यू नो इट्स अ ब्यूटिफुल रोल एच आर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो रोल। इट्स लाइक यू आर ऑलवेज कनेक्टेड, यू कीप एंगेज्ड विद पीपल, टॉकिंग टू पीपल एंड टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। सब सोचते हैं कोई जॉब मतलब इतना वर्क नहीं होता होगा, लेकिन यस इट हैज़ लॉट ऑफ वर्क, इट एक्चुअली हैज़ लॉट ऑफ वर्क। तो वो होता है चल। और उन्होंने सही गेस किया, मुन्ना भाई MBBS का है ये, जिसमें जादू की झप्पी के बारे में काफ़ी बार यू नो द सीन कम्स एंड गो, उसमें बहुत बार जिक्र किया गया है इस चीज़ के बारे में। एंड यस ऑफ कोर्स, मतलब उसमें है तो है मैजिक फॉर श्योर। यू जस्ट गिव अ हग टू अ पर्सन एंड देन या एवरीथिंग इज़ लाइक सॉर्टेड फॉर देम। या अगर आप, इट्स नॉट द अदर वे, यू नो इट्स ऑल्सो लाइक अदर वे राउंड, लाइक कि अगर आपको भी कभी लो लगता है या फिर यू नो यू नीड दैट कॉन्फिडेंस कुछ करने से पहले, देन वेन यू यू जस्ट गो एंड हग योर मॉम और डैड और योर ब्रदर और योर हस्बैंड और जो भी है यू नो योर पार्टनर, बट उससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना और जो एनर्जी आती है ना, ऐसा लगता है अब तो हम हर चीज़ जीत जाएंगे, राइट? वैसी वाली फीलिंग आती है। तो दैट्स वॉट इट वॉज, मुन्ना भाई MBBS का था वो। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन गेस करता है नेक्स्ट वन। अब मेरे पास मूवीज कम पड़ रही है, फिर भी मैं बहुत मूवीज देखती हूँ, तो उसमें से एक और निकाल के बताती हूँ। उस मूवी में ये होता है कि ओके वेल वेल लेट्स सी, अगर ये पता नहीं गेस कर पाएंगे नहीं, लेकिन उसमें ये होता है कि एक हीरो होता है और उसको यू नो ही इज लाइक सपोज टू डाई इन दैट मूवी, वो मरने वाला होता है। एंड उसमें उस सीन में ये होता है कि जो हीरोइन होती है ना, वो हीरोइन को इससे प्यार हो जाता है, लेकिन दिस गाई अब वो बता तो नहीं सकता है उसे क्या हुआ है, एंड और वो ये नहीं कर सकता कि उससे प्यार, उसे भी प्यार हो जाता है लेकिन नहीं बता सकता है वो, एंड दैट कैन नॉट हैपन बिकॉज ही नोज दैट ही इज़ गोइंग टू डाई. तो वो झूठ बोल देता है ना कि उसको एक डॉक्टर होती है उसमें तो उससे प्यार हो गया है, एंड देन दिस गर्ल गेट्स मैरिड टू सम अदर गाय. और उसे बाद में पता चलता है कि ओ माई गॉड उसे यू नो ही वॉजंट वेल, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड. तो ऐसा सीन होता है, बहुत ही इमोशनल है, लेकिन उसमें जो स्टोरी जिस तरीके से बताई गई है ना, उसमें उसमें भी इसी तरीके का कुछ सिखाया गया है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सी द लाइफ, हाउ यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, सो इट्स ऑल अबाउट दैट. तो आप गेस करिए इसे, मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है. तो एंड आपको हिंट अगर दे दूँ तो ये बहुत ही फेमस और सबके फेवरेट हीरो उनकी मूवी है ये, जिसमें उनको कैंसर हो जाता है एंड ही वाज डाइंग इन दैट मूवी. ओके, अगर गेस करते हैं तो कॉल करिए एट 919-999-8595 पर और हमें बताइए कौन सी मूवी में ऐसा सीन है. ऑलराइट, एंड इसी के साथ वेल देखते हैं और किसने, यू नो व्हाट, क्या. अच्छा, ये भी एक और चीज़ मुझे बतानी है कि बहुत लोग कॉल कर रहे हैं, एंड आई एम सो सॉरी कि मैं सबका कॉल तो नहीं ले पा रही हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो दैट योर कॉल इज़ नॉट गेटिंग कनेक्ट, और ऐसा नहीं है. आई हैव टू टेक द रैंडम कॉल्स एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, सो डोंट वरी. फॉर श्योर मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सबका कॉल ले सकूँ. However, yeah, that's the thing. मतलब ये मत सोचना कि नंबर नहीं लग रहा है यार. Don't get that, okay? ऐसा नहीं है. तो और क्या बताऊँ मैं, इट्स ऑलरेडी 6:29. ओ माई गॉड, गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत बहुत, और सब लोग बहुत अच्छी तरीके से इसे गेस कर रहे हैं. तो चलिए इसी के साथ विल बी राइट बैक आफ्टर फ्यू कमर्शियल्स एंड अ सॉन्ग.
2: हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. मेरा नाम है नायाब मिढा एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा. एंड गेस व्हाट, आई एम ब्रिंगिंग माय शो राजकुमारी, माय पोएट्री स्टोरी टेलिंग शो राजकुमारी टू रैले दिस अक्टूबर 2nd. कैच मी लाइव एट द गार्नर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर प्रेजेंटेड बाय ओहो प्रोडक्शंस. टिकट्स जल्दी जल्दी निकल रहे हैं तो ग्रैब योर्स टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑलरेडी. सी यू देयर. थैंक यू सो मच. जल्दी मिलते हैं कविताओं के साथ, कहानियों के साथ, किस्सों के साथ रैली में.
3: हम सब दिवाली इज ब्रिंगिंग अलाइव द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड यू डोंट वांट टू मिस इट. गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर फीचरिंग स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंसेस, डिलिशियस फूड, एक्साइटिंग शॉपिंग, फैमिली फन एंड सो मच मोर. Bring your family, bring your friends, and come experience the magic of Hum Sub Diwali. And calling all musicians, composers, and creative talents. Could you create the sound of Hum Sub? Enter our exciting Hum Sub theme song composition competition and let your music become part of the Hum Sub story. For complete details about the competition and Hum Sub Diwali, visit humsub.org.
4: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो वैष्णवी लाइव शो विद योर होस्ट वैष्णवी ओनली ऑन रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम एंड 1490 एएम पर। वेल, आप अगर तेलुगु गाना सुनते हैं तो आप हमें सुन सकते हैं एट 99.9 एफएम एचडी 3, दैट्स फॉर साउथ इंडियन म्यूजिक। ओके, तेलुगु में भी बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ट्रैक्स आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स को हम चुन के हमने यू नो रखा है उसमें। तो या इफ़ यू हैव लव फॉर तेलुगु सॉन्ग्स देन प्लीज ट्यून इन टू 99.9 एफएम एचडी 3। वेल, अब द टाइम इज 6:39 PM एंड वी आर रियली डूइंग गुड। चलो नेक्स्ट, एक और कहानी मुझे याद आती है, अब मैं उसका सीन बताने वाली हूँ। सो द सीन इज आई मीन उस मूवी में क्या होता है, लाइक आई विल जस्ट गिव यू द क्लू। लाइक एक ओके एक छोटी पाकिस्तानी लड़की जो बोल नहीं सकती है, ठीक है, उस मूवी में एंड और वो इंडिया में खो जाती है। ओके, सुनना ध्यान से। एक छोटी पाकिस्तानी लड़की जो बोल नहीं सकती है और वो इंडिया में खो जाती है, तो एक आदमी यानी कि हीरो जो है उसमें, उसे उसकी फैमिली के पास वापस ले जाता है। ओके, गेस किया आप लोगों ने, तो कॉल करिए 8919998595 पर। फिर से बता दो, एक छोटी पाकिस्तानी लड़की जो बोल नहीं सकती है वो इंडिया में खो जाती है और एक आदमी उसे उसकी फैमिली के पास वापस ले जाता है और उससे मिलवाता है। एंड दैट सीन, ओ माय गॉड, क्लाइमैक्स सीन, दिल को छू जाता है उस मूवी में। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची उसमें, बहुत ही क्यूट मूवी है कहूँगी मैं इसे। और जो लास्ट इमोशन है ना, वो ऐसा लगता है यस यार, वाई दिस LOC, वाई है ना, ऐसा लगता है वो टाइम पे। तो अगर आपने गेस कर लिया है मूवी का नाम तो हमें कॉल करिए 8919998595 पर और हमें बताइए सही जवाब क्या है इसका। आई एम श्योर ये भी बहुत लोगों को पता होगा, यू नो हूएवर गॉट लव फॉर बॉलीवुड, यस ऑफकोर्स यू विल गेस इट राइट। तो इसी के साथ आई थिंक हमने बहुत अच्छे से खेला है इसको एंड आई होप आप इसका भी आंसर दे दे, दैट विल कंप्लीट माय टारगेट की यस, मैंने जितने भी सवाल किए सबका आंसर दिया गया है। और आई थिंक वन आंसर वाज लाइक, जिसका आंसर मैंने खुद बताया था, तो दैट वाज द टफेस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जो क्वीन मूवी का मैंने शायद ठीक से बताया नहीं था या आई डोंट नो व्हाट, लेकिन मैंने सोचा सब गेस कर देंगे उसको भी, लेकिन या नो वरीज होता है। और शायद आप लोगों ने सोचा कि चलो हम क्यों ना टेस्ट कर ले वैष्णवी को, राइट, हम टेस्ट करते हैं इसका सवाल अब यही आंसर देगी कि अगर यू नो पूछा है तो आंसर पता है नहीं पता है, शायद हो सकता है आप लोगों ने मुझे टेस्ट किया हो, तो वैसे मैं पास हो चुकी हूँ टेस्ट में। ओके, तो अगर आप अभी इस जो मैंने अभी पूछा है अगर उसका कर देते हो तो यस, दैट्स लाइक आज का दिन बहुत कंप्लीट हो जाएगा मेरे लिए। तो एक छोटी पाकिस्तानी लड़की जो बोल नहीं सकती है और इंडिया में खो जाती है, एक आदमी उसकी फैमिली से फैमिली के पास वापस ले जाता है, दैट्स द थिंग। तो अगर आपने गेस किया है तो कॉल करना 8919998595 पर। और तब तक के लिए आ रहा है एक अमेजिंग गाना तुषार जोशी एंड सुमेधा कारमाहिका। ओके, तैयार हो आप सुनने के लिए, लीजिए

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो वैष्णवी लाइव शो विथ योर होस्ट वैष्णवी। और आई थिंक किसी ने गेस कर लिया है, तो चलिए देखते हैं अगले कॉलर ने गेस किया है तो जानते हैं क्या गेस किया है उन्होंने। हेलो, हाय, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम कुणाल है।
0: हाय कुणाल, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं ओहायो से बात कर रहा
0: हूँ। ओहायो, हाउ आर यू डूइंग? मैं बढ़िया, थैंक यू सो मच। आई एम डूइंग रियली वेल।
1: आई एम रेगुलर लिसनर फॉर योर स्टेशन, सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर लिसनिंग ऑल बॉलीवुड सॉन्ग ऑल द टाइम।
0: थैंक यू कुणाल।
1: इट्स रियली लाइक यू नो जस्ट लाइक कि इंडिया इंडिया में ही हम आप लोग इतना मतलब कि सेंटीमेंट सोचे बात करते हैं ना, लाइक
0: वेल थैंक यू सो मच कुणाल, दिस मीन्स अ लॉट टू अस। एंड ऑफकोर्स यू नो इंडियन में ही है वो इमोशंस, जो इमोशंस बाहर निकलते हैं।
1: सेंटीमेंट नहीं है ना, इमोशन लेस कंट्रीज में हम यहाँ पे वो मिस करते हैं वो सोचते
0: हैं। या आई मीन सबका अपना अपना अंदाज होता है इमोशंस दिखाने का, सो या ऑफ कोर्स। और डिड यू गेस द मूवी नेम?
1: या आई टोल्ड यू इट्स कॉल्ड बजरंगी भाईजान।
0: एब्सोल्युटली इट्स बजरंगी भाईजान, बहुत अच्छी मूवी है। डू यू लाइक दैट मूवी?
1: Oh yes, it was a fun movie. It's four times I watched every time when I was on the TV.
0: I really like the, उसमें सबसे क्यूट सा मुझे वो वाला सीन लगता है जब वो क्रिकेट मैच चल रहा होता है टीवी पे इंडिया का विकेट निकल जाता है।
1: प्लेयर कौन है? विराट कोहली, युवराज सिंह।
0: Yeah, that scene, वो बहुत ही प्यारी सीरीज है, सबको हंसा देती है उस मूवी में। सो या थैंक यू सो मच।
1: आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं, आप अपना शो कंटिन्यू करें।
0: थैंक यू कुणाल, थैंक्स फॉर कॉलिंग फ्रॉम ओहायो, एंड यू कीप लिसनिंग टू रेडियो नायरा, एंड यू हैव अ वेरी गुड इवनिंग, रेस्ट ऑफ द इवनिंग। या ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय। तो ये थे कुणाल जिन्होंने कॉल किया ओहायो से, एंड उन्होंने गेस भी कर लिया सही मूवी का नाम। वाओ, चलो मेरा टारगेट तो पूरा हो गया आज का, सबने काफ़ी अच्छे से खेला एंड इट फील्स सो गुड कि आवाज़ सुन के जब हम सब इतने कनेक्टेड हैं, ओ माय गॉड, दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी फॉर एवरीवन कि हम सब ऑन एयर इस तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं, राइट? आई मीन जस्ट इमेजिन मैन, ना मैं आप सबको जानती हूँ या आप मुझे पता नहीं कितना जानते हैं या जानते ही नहीं, लेकिन हम सब कनेक्ट हो गए और एंड वी स्टार्टेड प्लेइंग वर्चुअली। वाओ, और सबने खूब अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप सबको भी बहुत बहुत मज़ा आया होगा, एंड यू नो इट रियली गिव्स मी अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कम बैक अगेन नेक्स्ट वीक एंड विथ न्यू टॉपिक, न्यू गेम हो या जो भी हो, आप सबसे बात करने के लिए मैं ज़रूर अपनी तैयारी के साथ फिर मिलूंगी अगले हफ्ते। इट्स ऑलरेडी वी आर स्टैंडिंग एट 6:50 PM, देखते ही देखते 2 hours, ओ माई गॉड, दैट्स अमेजिंग एंड लवली टॉकिंग टू यू। और इसी के साथ सो दोस्तों, आज क्या हेलो वैष्णवी को यही रैप करते हैं और मूवीज़ के सीन्स गेस करते करते कितनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि यू नो फॉर मी इट्स अमेजिंग। कुछ लोगों को स्पेन, यू नो दैट गॉट देम टू कनेक्ट, कुछ लोगों को गेम या फिर कुछ लोगों को मतलब कोई ना कोई चीज़ बस कनेक्ट हो ही गई है ना। और आपके आंसर्स और कॉल्स ने तो शो को और भी मज़ेदार बना दिया। It really gave me a lot of energy when I get calls and when we are talking. अनजानों से बात करना, अब तो ऐसा लगता है सब मेरे पहचान वाले हो गए हैं सच्ची में, जिन्होंने कॉल किया और जो घर पर या ड्राइव करते हुए गेस कर रहे थे, सबको दिल से थैंक यू। और किसी गाने या मूवी ने किसी पुराने दोस्त की याद दिलाई हो तो उन्हें एक छोटा सा हेलो ज़रूर भेजिएगा। मैं जो हमेशा कहती हूँ, मैं हूँ आपकी होस्ट वैष्णवी और आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD 4, 101.9 FM एंड 1490 AM पर। ऑनलाइन जुड़े रहिए radionaira.com पर, ठीक है? और तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते विथ हेलो वैष्णवी और नए नए सवालों और खूब सारी बातों के साथ। और तब तक अपना ख्याल रखिए और जो मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए और रेडियो नायरा सुनते रहिए। नमस्ते, गुड इवनिंग।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।